अपने बड़ाई राम सरदे श्री अमृतसर राम सरदे तट ते बैठ के आपने ए बीड़ तैयार करवाई साहिब श्री गुरुवंत साहब जी महाराज दी ते फिर हरिमंदर साहब विच आपने प्रकाश करवाया। बीड़ तैयार कराण लग्या इस गल दा खास ध्यान रखा गया कि उना उना भगतां दी बाणी नूं ही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चाड़ना है जो सिखी आशे दे अनुकूल हन, सच दे अनुकूल हन, यथारत दे अनुकूल हन। भगत छज्जू जी जद आए ते उन्होंने अपना कलाम पेश कीता ते कहन लगे कागज संधि पोतरी तो भी त्रिय न निहार यही मार ले जावई यथा बिलोचन धार। स्त्री अगर कागज दी भी बनी होवे तो नहीं वेखना चाहिदा, मन चंचल हो जांदा है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे छज्जू अपनी मां नूं वेखदा है कि नहीं, अपने भैण दे दर्शन करदा है या नहीं, भैण नूं वेख के मन मैला होंदा है? छज्जू जी कहन लगे नहीं, मां नूं वेख के कदी मन मैला होया है? नहीं महाराज, कदी नहीं मैला होया। तो जगत दे तमाम स्त्रियां नूं मां समझ ले, भैण समझ ले, मन मैला नहीं होएगा, मन निर्मल होएगा। कान्हा जी कहन लगे मैं ओही रे, मैं ओही रे, एकदम रोकया। सतगुरु कहन लगे असी मैं दे चलीन नहीं होना, असी तू दे चलीन होना, तेरे बचन भी गुरु आशे अनुसार नहीं है। फिर जमाल हुसैन बोले चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जावे अड़िया चुप वे अड़िया चुप। सतगुरु कहन लगे नहीं तेरे बोल भी गुरु आशे अनुसार नहीं ने, असी ते इस ढंग दे बचना नु ही थां दे सकदे हां। जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। जगत दे जितने दिन तक जीवना है कुछ कहना है कुछ सुनना है, इसे लई अकाल पुरख ने कन बनाए ने, रसना बनाईए। ए नहीं कि खामोश हो जाना है, चुप हो जाना है, नहीं बोलना है। बोल के ही जगत नाल संबंध जुड़दा है ते बोल के ही परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। ठीक ढंग नाल बोल सकीए, इस वास्ते जगत तो कुछ सुनदे भी रहना है, ठीक सुनदे भी रहना है, ताकि जगत दी होंद दा और ओदी असलियत दा पता चले। तो आपने बड़ी सावधानी दे नाल भगतां दी बाणी इकत्र कीती और उना उना भगतां दी जो गुरु ते सच दे आशे अनुसार सी, इस ढंग नाल आपने बाणी दा बोहत बाणी दा जहाज तैयार कराया और हरिमंदर साहब विच प्रकाश करा के ताबिया विच बिठाया भाई बुढ़ा जी। आपने उस दिन जो सिखां प्रति उपदेश कीता होए कि सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब नादर सह हैं, ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते यहां ते है धीरग साहेब जान अदायब कह हो, पूजो चंदन को केसर को घस धूप दुलखाए के फूल चढ़े हो। साहेब कहने मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना क्यों, मैं आज हां कल नहीं पर ए जुगो जुग अटल ने, मैं एक थां ते हां सारी थां ते नहीं पर शब्द दा प्रकाश सारी थावां ते, गुरु मेरे संग सदा है नाले, ए शब्द अंग संग होवेगा, शब्द गुरु हर वक्त हर थां ते अंग संग होवेगा, सर्व काल होवेगा, सर्व ठौर होवेगा। इस वास्ते मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, महान करके जानना, निर्माणता दे पुंज ने पहले प्रकाश दे समय अपना मस्तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अगों झुकाया और सिख जगत नूं यही प्रेरणा की थी कि मेरे स्वरूप ते यहां ते है दीरग साहिब जान अदायब कह हो, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। आप दी शख्सियत बारे आप दी महानता बारे भट्ट इंज कहंदे ने, ओ भट्ट जो सारी जिंदगी संत दी पूर्ण गुरु दी टोल दे च रहे पर ना मिलिया किते। आप स्वयं कहंदे ने रहो संत हो टोल साध बैउ तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरो कोनो परचो लायो, कहते कहते सुनो
رہے۔

जो परिपूर्ण परमात्मा थोड़े कंठ तो निकाले वचन ओही दसने ओही कहने ने। तुसी गुरु नानक दा संदेश ते उपदेश दिखाना है ना के करामात दिखानी है। लेकिन शाही रोब दे थले राम राय आ गए, बाणी दे अर्थ भी उल्ट कर दिते ते 72 यके बादीगरे करामातां भी दिखाईयां। साहिब गुरु हर राय साहब जी महाराज ने कह दिता असी मुंह नहीं लाना, जद राम राय गया है तो सतगुरु ने बूए बंद कर दिते मुंह नहीं लाना। तो राम राय नू दिस पई गल कि गद्दी दा वारस मेरा छोटा भरा बनेगा और वह हकीकत हुई। तो विरोधता इसने चारों पासे खड़ी की थी लेकिन कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। गुरु नानक दी महान बख्शिश ते गुरु नानक दी अठवीं गद्दी दे वारस श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जगत ते बख्शिशां करदे रहे। अंतिम समय आप जी दी रसना तो केवल यही बोल निकले, बाबा बका ले, बाबा बका ले। भाव हुण नौवें गुरु नानक दी जोत बकाले दे छे, नौवें पातशाह दी जोत बकाले दे छे। दिल्ली ते बकाले दे छे काफी दूरी सी, लिहाजा आपने बचना दे राही शब्दां दे राही गुरुगद्दी दे दित्ती और सिख जगत नूं कह दिता बाबे दी तलाश बाबे दे दर्शन बकाले विच करना। बकाले विच ही गुरु नानक देव जी महाराज दी नौवीं जोत दे दर्शन होणगे। गुरु नानक देव जी महाराज दी नौवीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आप गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे साहिबजादे सन और श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिथे शांति सबर ते ज्ञान जगत नू वंडदे रहे उत्थे नामी गद्दी दा जिक्र भी सिख जगत नू दे गए, बाबा बका ले। बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हर राय साहब जी ते गुरु हर राय साहब जी दे सपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे सक्के भरा पंज साहिबजादे सन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे। इस नाते च गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा जी ने, तो दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती है और पोतरे ने दादे नूं गद्दी दित्ती है। दरअसल ए गद्दी ते जोत है न के शरीर है। गुरु नानक दी जोत घर बदलती रही, पहला घर दूजा घर तीजा घर चौथा घर जिसनूं महला पहला महला दूजा महला तीजा कहिए हुण महले नावें दिच आई। हुण महल जेड़ा है नावा है, हुण टिकाणा नावा है, जोत ओही है। श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे मुखार बिंद तों जदे शब्द निकले ने बाबा बका ले, उस वक्त गालबन 26 साल हो गए सन बकाले दे च भोरे दे च रहिंदे आ गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे ज्योति जोत समाण तो बाद आप माता नानकी ते सुपत्नी गुजरी जी नाल नानके पिंड बाबा बकाले आ गए। पर आप दी रहन सहन दी बिरती न्यारी, भोरे च ही बैठे रहना। दरअसल इदा ए मतलब नहीं कि कोई जप तप करके सुरत उच्ची करनी सी, आप ते परम पुरख सन। बचपन तो ही भक्ति भावना अकाल पुरख तो लेके आए ने, लेकिन एक लंबे कम दी तैयारी लई आप नूं भोरे च बैठना पिया। क्यों कि आप नूं दिस पिया सी कि देश दा कल्याण देश दी संस्कृति से ढंग नाल बचाई जा सकदी है, देश दा धार्मिक पतन ना होवे ते देश

हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर मधुवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सत्संग जीओ, गुरमत विचारा, गुरबाणी विचार, आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे से। इस माहौल विच, इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने, वह मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाण दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साड़ी होंद ना अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सों विच वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस विच असी हैगे आ, वो साडे विच है तो वो है। फिर इसनू इस तरह वो व्याख्या दे रूप विच लैंदे ने, सूरज। सूरज दी किरण है, किरण दा प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावा, सूरज है एक, फिर किरण है दो, फिर किरण का प्रकाश है तीन, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित तो हो रहे वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित हो रहा है, प्रगट हो रहा है, वो ये तन, वो ये शरीर, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावा, सूरज है, किरण है, किरण दा प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तो जिड़ी चीज प्रकाशित हो रही है वो है। परमात्मा है, आप सत्संगी हो, ते धन गुरु ग्रंथ साहब ने इस तरह ही ख्याल मैनू दिते ने, क्योंकि सब कुछ गुरबाणी विच है और पातशाह ने छुपाया कुछ भी नहीं, सिर्फ खोलण दी गल है। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। अपने कोल अपनी गल ते कुछ भी नहीं, ये खजाना है। और गजब दी गल है, एदे दरवाजे खुलदे ही नहीं। जितना कीमती खजाना हुंदा छुपा के रखे है,

समय सिमरन तो नानक राम दामोदर माधुवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम किरण ते सूरज भावें अलग नहीं फिर भी दो प्रतीत हो रहन ते नाम भी दो पैगन एक सूरज एक किरण दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे ने चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए सूरज और किरण सागर ते लहर दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे सागर ते लहर चूंकि दो दिखाई दे रहे ने हैं ते नहीं इस वास्ते नाम भी दो पै गए सागर ते लहर है ते सागर ही सागर लेकिन सागर झलक रहा है लहरां विच है ते सूरज ही सूरज पर सूरज झलक रहा है किरणां दे चूंकि दिखाई दो दे रहन है न नहीं दो एन नहीं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती ऐसा वेदांती कहते हैं एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं पर जब दो दिखाई दे रहे हैं ते नाम भी दो पै गए ने फिर इसका विस्तार होया फिर दोवां तो चार होया एक सूरज दी किरण एक किरण दा प्रकाश एक प्रकाश विच जो प्रगट हो रहा है दिखाई दे रहा है ओ अगर एक प्रकाश ना होवे तो नहीं दिखाई देगा। मैं कई दफा अर्ज कर चुके हैं अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है अंधेरे ते हिमालय पर्वत भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देंदा जमीन तो कई गुणा वड्डा फिर भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देंदा उचियां उचियां बिल्डिंगा नहीं दिखाई देंदा अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देंदे सड़कां भी नहीं दिखाई देंदियां एक लख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देंदा इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है बहुत वड्डा पर्दा बहुत वड्डा पर्दा अंधेरा सब कुछ नू ढक देंदा है प्रकाश सब कुछ नू प्रगट कर देंदा है प्रगट कर देंदा तो मैं अर्ज करा जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है उंज नहीं एक परमात्मा एक आत्मा फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है। मैं इस प्रकरण नु कितना खोल सकांगे ते गुरु दी दित्ती हुई समर्था ठीक है मैं छेड़ बैठा पर जितनी गुरु दी कला वरतानगे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करनगे इस मुख नुक्ते नु मैं थोड़े सामने खोलन दी निमाणी कोशिश करांगा क्योंकि आम ये दो पंक्तियां दोहराइया जांदियां खास

0: प्रभु हे कुमार तू फिर मेरे मन रूपी मिट्टी चो की बनाया अत्र मित्र गल्लब पर गल्लब कुलाल विद कोने विद करे विद वे तो घरे घरे हैं इस तरह दे तू घड़े बना देते ए मेरा अपना है ए मेरा बेगाना है ए शत्रु है ए मेरा मित्र है ए मेरा पुत्र है ए मेरा मित्र है ए मेरी पत्नी है ए मेरे मां बाप ने मेरा भरा है मेरी संपदा है मेरा घर है बड़ा पसारा तू मेरे मन चो बना देता सब मन चो ते जे इतना सारा पसारा मन चो बने है ते मन नु समेट दे सारा पसारा खत्म हो जाता है सब खत्म हो जाता है धर्म दी मूल साधना है मन नु एकाग्र करना मन दा एक होना सावधान होना सारा पसारा खत्म हो जाता है ते सारा पसारा जब खत्म होगा तो प्रकाश किरण दे चलेन हो जाता है जैसे प्रकाश किरण दे चलेन हो जाता है यकीन जानो किरण सूरज दे चलेन हो जाता है इसे नू ही कहया सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम जो मन बनया सी ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मैनू कुछ इथे बैठे अनुभव बख्शे सन ओ हुण मैं बयान करा ते कम से कम मैनू चार पांच दिन होर लगन गए अंदर एक हड़ चले पर मैं हुण वर्का इथे ही समाप्त करना किताब इथे ही टपना समा हो गया वक्त हो गया ए पसारा जो प्रकाश करके प्रकाशित हो रहा सी दिखाई दे रहा सी मन दे एकागर होंदिया सारा पसारा सिमट जांदा है परतरी इंज कहिंदे फिर मन आत्मा दे चलीन हो जाता है पर जैसे मन आत्मा चलीन होया आत्मा परमात्मा चलीन हो जाती है इस तरह की लीनता की अवस्था नु गुरबाणी फिर इंज बयान कर दी है सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम इस प्रसंग नु मैं फिर किसी जगह संपूर्ण करांगा ठीक है मैं दो दिन होर इत्थे है अज शाम नु दास ने श्री गुरु सिंह सभा विकासपुरी हाजरी भरनी है कल सवेरे श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली जमुना पर उत्थे दास ने हाजरी भरनी है ते इसे तरीके दे नाल कल शाम दी हाजरी श्री गुरु सिंह सभा प्रशांत विहार विच 24 तरीक गुरुद्वारा संतपुरा तिलक नगर बाबा धर्म सिंह जी का अस्थान उत्थे हाजरी भरनी है 24 तरीक शाम दी कालका जी श्री गुरु सिंह सभा उत्थे दास ने हाजरी भरनी है कोशिश तो यही होवेगी पर पता नहीं कलगीधर पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज केड़ी बाली खोलते ने केड़ा बुआ खोलते ने इस तों बाद दास ने अलवर चले जाना है क्योंकि एक दो तीन समागम गुरमत समागम जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपनी कृपा दित्ती हुई शक्ति समर्था दा सदका हर साल करा लेंदे ने अदके भी यह समागम चलना है हर साल चलता है जिन्हा जिन्हा सत्संगियों नूं समा मिले पहुंच सकते हैं दो ढाई घंटिया का ट्रेन का ते रोड का जो है रस्ता है इस थां ते हर साल हाजरी भरदे आया सरदार रजिंदर सिंह जी अगले साल का मैनू उसे वक्त नोट कराते हैं भाई अगला साल नोट करना तो मैं भी इन्हां नूं कहना हुंदा गुरु ने जिंदगी रखी सेहत रखी जरूर हाजरी भरांगे क्योंकि ये उस संत दी बरसी है जिहदे उत्ते दो पंक्तियां बिल्कुल पूरियां उतरदियां ने सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम उसे ही महान संत दा नाम सी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तों आने वाले सतगुर रहमत करन बख्शिश करन जिंदगी रही सेहत रही सतगुरु ने संजोग बनाया, फिर इसे ही स्थान थे, इसे ही बरसी विच तुहाडे चरण परसांगे। सारिआं दा धन्नवाद, महापुरखां दा धन्नवाद, समूह साध संगत ने एकाग्रता नाल सरवण कीता है। सब दा दास ऋणी भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरा साबित तुम हर जान हो आपे, अमृते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चुका सब सोग संतापे, सुकहो टल गुर सेविया, अहन सुसहज सुखाए, दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, हुआ सिपत खसमो दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा साहू, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहू, सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, सूही महला तीजा, जुग चारे थान जे पवै, बिन सतगुर सुहाग ना होई राम, निहचल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर ना कोई राम, जुग चारे थन जे पवै, बिन सतगुरु सुहाग ना होई राम, निहचल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर ना कोई राम, तिस बिन अवर ना कोई, सदा सच सोई, गुरमुख एको जानिया, धन पिर मेलावा हुआ, गुरमति मन मानिया, सतगुर मिलिया तां हर पाया, बिन हर नावा मुक्त ना होई, नानक कामण कंता भाव, नानक कामण कंता रावे, मन मानिया सुख होई, सतगुर सेव थान बालड़िए, हर वर पावह सोई राम, सदा होवह सुहागणी, फिर मैला वेश ना होई राम, फिर मैला वेश ना होई, गुरमुख बूझा कोई, हौ मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावा, शब्द समावा, अंतर एको जानिया, गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई, नानक कामण पिर रावे अपना, रव रहया प्रभ सुई, गुर की कार करे थन बालड़िए, हर वर दे मिलाए राम, हर कै रंग रती है कामण, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚ ਵਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਲੇ ਮਹਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ, ਸਾਤਨ ਬਾਲੀ ਧੁਰ ਮੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ, ਸੱਚ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਵਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੋ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣੇ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ।

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे हो। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया काम लोभ, काम अहंकार। एक कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंचदी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, ते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उते उकरियां हुईयां तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पिया। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जायो, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे ते मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी,
और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच? कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है। मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है। जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो ही स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया। हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नूं इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दिच बह गया, काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नूं रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समूह जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू, कीते हुए तप नू, शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है, ना तू शर्म रहन देना है, ना तू जप रहन देना है, ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन
ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲ ਚਲ ਚਲ, ਇਤਨਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮੀ ਮਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜਾਨੀ ਭਰਮਾਉਣੇ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕ ਗਮੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚ

और इस दौड़ देच इस कामी युग दे छम कैयत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत्र जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे एजत शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म कर दे सन दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे है जिन भूता नु काबू करना औखा सी अजो की औलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नु मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संयम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकिया सिर्फ काममय होके रह गया पातशाह कहंदे ने रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद सील संयम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइया बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दियां पढ़दियां पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हुण ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी पुरख होए सयाद सयाद शब्द फारसी दा है
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦੇ ਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

इसते भय तो डरदे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

चंद्र नाटक देकर था। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। उस देच मोह ते विवेक दी आपने जंग लिखी है। एक पासे राजा मोह है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां पंजां विषयां नूं जिहड़ी तरतीब दित्ती है, सब तो प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर अहंकार। सतगुरु ने इस तरह की तरतीब दित्ती है, मोह पहल। प्रबोध चंद्र नाटक दा करता, महान पंडित और महान दार्शनिक गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले, वो भी मोह नूं राजा मनदे ने, बाकी सब इन्हां दी सेना है। एक पासे मोह राजा, एक पासे विवेक। मोह दे सेनापति ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। विवेक दी भी सेना है शांति, प्रार्थना, ज्ञान, दया, शील, संयम इत्यादि। दोवें आमने सामने ने। और ग्रंथकार बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। बैठा है मोह राजा उदास निराश, क्रोध आके पूछता है, राजन इतने दुखी क्यों, इतने बेजार, इतने निराश क्यों? देखदा नहीं शील ते संयम ने काम नु मार दिता है, वासना नु मार दिता है। और वो जो सामने खड़ा है ज्ञान, वो जो अपने नाल ले खड़ा है शांति, दूरदृष्टता, इसने खत्म कर दिता है अहंकार। वो देख सामने खड़ा है संतोख, उसने लोभ दे भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे शक्तिशाली सेनापति जिस राजे दे मारे जान उस दियां ते बावां टुट गईयां। हे क्रोध, मैं इस वास्ते उदास बैठा, निराश बैठा, हुण ते हार यकीनी है, हार जावांगे, मर जावांगे, खत्म हो जावांगे। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिखदे ने, क्रोध हो वाच। उस वक्त क्रोध बोलदा है, नहीं मोह राजन, उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां, मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है, जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा? देखदा नहीं पिया सामने ज्ञान खड़ा है संतोख नु नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूरदृष्टता खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू? उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है, पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक दे इस तरह लिखते हैं, अंधकारों दृगवंतन को

करों और चौतर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकणगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त तो फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हमदीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब चल, तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखा है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तू बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है, तू इसी जल्दबाजी दे प्यो नूं कैद कीता, भरावां नूं कतल कीता, भैन जहां आरा नूं भी जेल दे च पाया। और ऐ औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमां दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सयाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

0: 아롱
1: 선, 에, 뭐라전? 메리카라 마덱. 맨 지 세르데 잡나 뺄 락데나. 오, 아프나 비그르다야 깜비니 덱사케가. 그, 깃나 비그르야. 메라 깃나 나 소래. 오, 아프니 아트마디 아와즈비니 손사케가. 에, 뭐라전? 또 메누 빼지게 덱. 진드기 바르죠 빠레어 베가, 살라바디죠 빠레어 베가, 익 첸드치메 블라르, 깨락대양가. 안빠르바나 깨락대양가. 그로드데치 사레어야 만옥테 안빠르락다. 그로드데치 젤레어야 만옥테 몰락다. 그로디테, 샤이탄락다. 네임에 소송다, 이 빠르르카 베가, 이 다르시니코 베가, 이 플로스퍼로 베가, 이 차타로 베가, पढ़ो जितनो खेन माए बेसारो जीवन भर जो इसने पढ़े मैं एक सेकंड देज भुला के रख देंगा एक छिन देज भुला के रख देंगा क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक देच इस तरह बयान कर देने हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते हे कलेश दी जड़ झगड़े दा मूल क्रोध झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है वर्ल्ड वार है मूल दे चाहे क्रोध है हे झगड़े दी जड़ हे क्लेश दा मूल हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन अन

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दीवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है। ज्यों कूकर हरकाया,

0: भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोवृत्ति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है।
1: एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

फिर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत कि गऊ सब तो उत्तम है,

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनिया कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा दा सागर है, मनुख अवगुणा दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे उंजते अनंत अवगण ने अनंत अवगण ने पर मूल कमजोरियां मूल अवगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणा दे सतगुरु मोह तो आरंभ करते हैं। मोह मेरा जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नु कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं होता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटने का दुख है, इसी टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनु पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह बढ़ जाता है, उतनी ही पकड़ बढ़ जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है। जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है, बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते ने। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन 5-6 वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पईयां वगांदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा विच बतीत हो रहा है, जो मेरा सी जिस विच मोह सी बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखया। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघ दे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उना दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या है, वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना देओ कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया। सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੋ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਗੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकल गए। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जांदा है, इसी ची मनुख तड़प के रह जांदा है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जांदा है, कठिन हो जांदा है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड़ रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है, मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उस नू गलवकड़ी च लैंदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

0: अत बलना बहुमर्दने।
1: हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं।
0: गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने।
1: बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते
0: मानुख
1: चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख
0: गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने।
1: फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मण ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नू भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां वी बंदरी बच्चे नू छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खरी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आउंदा, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके हैं। सारिया का मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति इन फरमान कर देने,

अभिगोप देचे। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां बना ते मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां बना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां बना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी दा सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट, प्रभु का चिंतन करे, नाम दे गीत गांदिया गांदिया मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है, निर्मोह हो जांदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने, बाकी तो सारे का सारा पराया। इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे, पराया होवे, तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा, डर विच जीवेगा, दुख देच जीवेगा। इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख देच ते भय देच जीवदा है। सारा जगत अपना है प्रेमी लई, सारा संसार अपना है, तो निर्भय होके विचरदा है, आनंद नाल विचरदा है, सुख नाल रमण करदा है। सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है, निर्मोही असीम होंदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है। बहुत छोटी दुनिया आती है मोह ग्रसे दी, जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी, उसकी सोचनी छोटी, उसकी समझ छोटी, उसका सब कुछ छोटा। बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख, और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही। कोई सीमा नहीं परमात्मा की, कोई सीमा नहीं निर्मोही की, कोई सीमा नहीं। साढ़े देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है, राजा सी, स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह, और वड्डा होके भी यही नाम पर चल रहा निर्मोह, राजा निर्मोह। ऐतिहासिक वार्ता है, एक ऋषि ने जब यह नाम सुनिया है राजा निर्मोह, हो नहीं सकता, कठिन है, औखी गल है, तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ। जैसे महलां विच दाखल होया है, राजे निर्मोह दी पटराणी मिली,

और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोहग्रस है निर्मोही नहीं। राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि भी कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता, आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी, मैं थोड़ी देर दे चावना। राणी नु ऋषि कहिंदा है, राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते, पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मौत उच्ची हो गई सी। ऋषि नु कहन लगी, पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दिस जाए। पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दिस जाए। संसार एक वृक्ष दी तरह है, कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने, और संस्कारा ते प्रालवद वसो के संजोग वसो के इना परिवारा दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नु चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उनू तो वेखिए। गया राजसभा दे ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता बिठाया, आन दा कारण पुछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख बहुत संताप बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हां मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है,
राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ना ताज दा मोह, ना तहत दा मोह, ना परिवार दा मोह, ना संसार दा मोह, केवल प्रेम अकाल पुरख दा, प्रभु चिंतन दे नाल, उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है, और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति, और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है, मोह ग्रसे दी भी सीमा है, निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरजोई करदा है, अरदास करदा है, और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

ते ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन हम बड कव मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ले फिर दिए। कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कब है नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आंदा उसनूं इतना बोझल नहीं करदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਗਣਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਦ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ। ਇੱਕ ਅਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਅਕਲ ਸਿਰ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਉ ਨਾ ਲਹਨ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा परबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावां अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आउन सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेड़े तू है की हड्डियां दे चढ़े होया मांस दे चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी और की है तू हड्डियां दा माण जोबन जवानी दा माण हड्डियां दा माण मांस दा माण मिंज दा माण और खलड़ी दा माण इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं
कर्पूर बहुत सुगंधा, पर्स मानक देहं मलिनं मजार उदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मास खलड़ी। अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा, जो बंदा अहंकार करदा है, फिर धन दा अहंकार। धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगा चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण दे चाया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं।
इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उस दे सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनदा है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण दा कारण बन जांदी है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु दा रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे लीन हो जांदी है, ईश्वर दा रूप हो जांदा है मनुख। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान दा रूप बना दिता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देंदा है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच, जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रही है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आसरत है, तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है अज रहा चनार अज रहा चुनार कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके,
اتنا اکڑ کے نہ چل. با خلق چونا زی کے قیامت نہ کند، خلقت دچ اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن دے نال قیامت نہ ہوئے. در مسجد گر روی کے چونا زو کے تو را، در پیش نہ خوانند او امامد نہ کند، جے کدرے عبادت کرنو تیرا جی کرے تو نمازیاں دے پچھے ہو کے نماز پڑھی، کدرے اگے ہو کے نہیں. ایسا نہ ہوئے کہ تیرے اندر امام بنن دا چاہ پیدا ہو جائے اور نماز پڑھدیاں مسجد دے چھوی تو کہہ اٹھیں کہ میں ہی سب تو وڈا، میں ہی سب تو وڈا. اکثر دھارمک مندراں دے چھوی تے لوکی پردانگی لبدے نے تے پردان تے پرماتما ہے، یا پھر جس دا مٹ گیا سارا اہنکار او پردان ہو سکدا ہے. سگل پرکھ میں پرکھ پردان، ساد سنگ جانکا مٹے اب مان. جو سنگت دے چرنا دی خاک ہو گیا مستق دا تلک تے پھر اوہی بندا ہے، پر جو پہلے ہی مستق دے تے اسوار ہو کے بیٹھا ہے شاید اسنو مخلوق دے قدمہ دے چوی جو ہے تھا نہ ملے، پر اہنکاری تے سر تے بیٹھن دی کوشش کردا ہے. اہنکاریاں دے آسن سنگاسن لوگاں دے سر دے اتے ہی ہوندے نے. ساری راجنیتی ساری ستا اہنکار آشرتے ہے اور اہنکاری سراں تے ہی تے بیٹھدا ہے. کئی دفعہ سر ہل جاندے نے تے تھلے گڑدا ہے. اس واسطے کہندے نا غرور کا سر نیچا. آخر جو لوگاں دے سر جھکانا چاہندا ہے ایک دن اس دا سر نیواں ہو کے رہ جاندا ہے، اہنکاری شرمسار ہو کے رہ جاندا ہے. اس واسطے اہنکار پرماتما دے وچکار ایک بہت وڈی دیوار ہے، ایک بہت وڈی دیوار ہے. ساری دھارمک سادھنا اس دیوار نو توڑن واسطے ہے. پر اہنکار بڑا چلاک ہے، یہ دھارمک سادھنا نو بھی اپنا سنگاسن بٹھا بنا دیندا ہے. بیٹھنا سی اس تے پربھو نے آپ بیٹھ جاندا ہے. تیرتھے برتے اردان کر،

0: दूसरे घर वालों ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन दे दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या कर देने ज्ञानी ने, रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नू प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नू देख रहे ने। स्वाभाविक पूछ रहे है, संत जी ए नाल कौन आए ने, ए केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इना कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया, जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी अहंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी, ये बड़े बुरे पुरुष आंदे ने अहंकारी, गुरु नु भी छुपांदे ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नु छुपांदे ने, पुत्र नु छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नू भी पिछे सुटीए, परमात्मा नू भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नू भी नहीं मन सकदा, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तो ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नू अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं, इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना कीती है। फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस जहां में दूसरा
1: ਕੋਈ

अह अहंकार तेरे करके ए जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जांदे ने टूट जांदे ने। अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं।

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद कोल इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वकत दी गिरफ्त दे चे, मनुख समय दे बंधन दे चे, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वकत समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे चे। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पिया जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नु तड़प रहा है, रात नु तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दिया तीन धारावां मनिया ने समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तीन धारावां विच। जब मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनया, ठोस जीवन बनया, वनस्पति पशु पक्षी सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छा, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नूं किस तरह नापिए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आने वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य दे जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, इह एक दम जो मोह दे चै नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने के नहीं, मिलने ने के नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने के नहीं, नकद ते है वही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एक दम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आन वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچا اٹھ گیا، یہ تو سنسار تو اچا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گے کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں. بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبو ہی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دیش تے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دیش تے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دیش تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے، وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات اتے جال بن کے منک نو پسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے دستے سہی، کیوں چھٹے گا اس جال تو.
सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा फाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे च है, सच ते एक सैकंड दे च है, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया है। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला, अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमा दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम तो मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमा दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवे हाथ जोड़ के पूछते ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मोह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना क भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दे डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दे डिग गया मन मिट गया विचार खो गए उथे एक नू प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय का तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक
विष्णु जैसा महान सतोगुण, शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखे अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दिया यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसने उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहे, मुस्तकबिल दी फिकर दे जी रहे, इते भूतकाल दी यादां दे जी रहे, इते माजी दी यादां दे जी रहे। ये वर्तमान दिच नहीं, ये हाल दिच नहीं, और जो हाल दिच नहीं परेशान च कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत दिच, ईरान अफगानिस्तान दिच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान दिच है कि नहीं, एक प्रभु दिच हैं कि नहीं, कि दो दिच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दिच मिट गया। है नहीं है, नहीं है है, स्वप्न है, स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनती है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनती है जो जागृत अवस्था देच। पर स्वप्न देच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था दे संसार है वो जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किसनू सत कहिए ते किसनू मित कहिए, किसनू कहिए है ते किसनू कहिए नहीं है,
ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸਵਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਹੌਕੇ ਨੇ ਤੋ ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ
सौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगा वर्गे हो गए, नहीं लंघदे नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा, लखां साल वर्गा, नहीं लंघदे इन्ना लंबा हो गया, कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगा वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत नु इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतीश जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नु दस दया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू चार साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नू मनिया नहीं, इसे गुनाह करके वो मैनू हमेशा ले नरक, हमेशा ले। और ऐसा नरक जिथे जंबूरा नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दल दल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नू रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। ते बहुत सख्त है, ते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे, एक क्षण दे, एक दम दे भूत खो गया, भविष्य खो गया,

0: किस तरह मिटे?
1: धन गुरु, अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहे, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दिसे सब को है, सारी चिंता दिस दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य की। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारा च बैठे ज्योतिषी मिलन गए, उन्होंने भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य की चिंता दे, जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेत है, गुजरिया हुआ कल कैसे सी, गुजरिया हुआ साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने आन वाला कल किस तरह होवेगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी दी सिमरति ये शक्ति ज्यादा होंदी है, वो इस जन्म दी दीवार नु तोड़ के अगले जन्मां च भी पहुंच जांदी है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादा मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहे है, इसे बोझ दे तले मनुख दबे हुआ है, यही भार चुकी फिरता है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमे आप दे कन्ना विच होकिया दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए थे नंद लाल, नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमा ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है? तो नंदलाल सोच दे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पातशाह मैं शायर हां कवि हां आपदा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है, पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है, चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूद आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे पातशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने, ओ जद आसमान तक पहुंचे ने, उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पातशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले

जी रहे हैं। अकाल पुरख रहमत करन, बख्शिश करन, काल खत्म हो गए, अकाल प्रकट हो गए। अकाल महाआनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है। काल भूतकाल दिया यादा ने, पर अकाल ना भूतकाल दिया यादा ना भविष्य दिया चिंतावा, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहते ने, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ए पागल संसारे हो, वाकई जो भूतकाल दिया यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दिया चिंतावां दे डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी ते सतगुरां दी बाणी फरमान कर दिए, काल जाल जम जोहो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईयां सारियां समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख दें दिए। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो।

किए जलेता छूट गई संसारी, सड़ गया क्रोध सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा महुआ सी, वो ऐसा पकया उदे चो निकली शराब नाम दी। उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, इस शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है, और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा। राम दा रस आउंदिया ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदिया ही क्रोध खत्म हो जांदा है, राम दा रस आउंदिया रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है, जीवन अमृतमय हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमय हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमय हो जांदे ने, दृष्टि अमृतमय हो जांदी है। जहरीले बोल दसदे ने जीवन जहर है, ये फिक्की दृष्टि दसती है, ये जहरीली निगाहां दसदियां ने जिंदगी जहर है। जहर नु अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है, पर जे अमृत नु जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है, मूड है, नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है, अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह देता, जो जहर हला हल है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनु पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है, ते जे तेनु पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है। जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनु पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनु कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है, पर एक कलाल तरका के उसनु शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नु कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नु मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नु जहर बनाया जा सकदा है, जहर नु अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नु अमृत बना लिया संत, और जिन्हें अमृत नु जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत विच, जहरमई अमृतमई। पर अमृत बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत विरले ही ने जिन्हां ने संखिए दा कुश्ता बनाया होवे, बहुते ने जिन्हां ने अंगूर दी शराब बना ली, संतरे दी शराब बना ली, मिठे गन्ने दे रस दी शराब बना ली। थोड़े ने जिन्हां ने जिंदगी नूं मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्हां ने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नूं गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ए पुरख तू सतसंग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर, ताकि युग दे प्रभाव तो तू बच सके, इस कलाली तो तेरी जान छुट सके, और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान, व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाई सतगुरु ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्याग रीर सखिए नाम महारस पियो। एक ही जहर तू पी रही है, अमृत पी अमृत पी अमृत पी, नाम रस अमृत है। और इसकी खूबी है, इनू पींद ही सारी जहर शरीर चो निकल दी है, सारे फिके रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।

मन और पुरुष का नाम पै गया कामराज। कितनी भी सर्कल दिच घूमती रवे स्त्री की वासना पुरुष से रुकती है, कितनी भी घूमती रवे वासना पुरुष की सर्कल दिच स्त्री से रुकती है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कहिंदे कलयुग ऐसा है बस कामना प्रधान होके जी रहे ने, वासना प्रधान होके जी रहे ने, भावना प्रधान नहीं। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे च ले आईए, ये मनुख बाजार दे च आया, फैक्ट्री दे च आया, ऑफिस दे च आया, मार्केट दे च आया, किसी धार्मिक मंदिर दे च नहीं आया, किसी गुरुद्वारे नहीं आया। अगर भावना करके आया है, भरोसे करके आया प्रभु ते भावना हो सकता है, अगर भावना नाल बैठा है तो यदि दुकान भी मंदिर बन जाए। ये भी मैं अर्ज कर दे, वासना करके बैठा है तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म रिच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अगर धार्मिक कर्म में भावना वस ना होके कामना वस होके कर रहे हैं तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मत्था टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा। पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुणद्या बुणद्या खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बुणो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुणदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी, ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया। मैं ते भावना करके बैठा, हुण तुसी कहिंदे हो ना करो, हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नू धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नू भी धंधा बना देंदे ने। महाराज कहिंदे ने इतनी कामना प्रधान, धंधा ही धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, परिवार चल रहा है, धन संपदा चल रही है, प्रभुता चल रही है, मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। यह सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है तुझ बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार दे जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस दे जाना है, पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए। ते असी ते बकायदा अरदास करते हैं फलाने की यह मनोकामना, फलाने की यह मनोकामना, ते हुण सुन लो, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारिया कामनावां नूं परे सुट गया, किथे सुट के आईए, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे को। जिथे जोड़े ला के आया ना कामनावां उत्थे ला के थे आ, फिर प्रभु तेरी झोली आत्मक रस नाल भर देगा, आनंद नाल भर देगा, गुरु तेरी झोली दे रब्बी गुण पा देगा। इस तरह दे जीवन दा ढंग सानू आ जाए तो मैर्ज करा परिवार दे बैठे भी असी निरंकार दे बैठे होवांगे, दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म तू मेरा मददगार बनया, किधरे पुत्र बन गए, किधरे पिता बन गए, किधरे दादा बन गए, किधरे भरा बन के, किधरे भैन बन के, तू मेरा सहयोगी बने है, किधरे पति बन के, किधरे पत्नी बन के, परिवार निरंकार का रूप हो जाएगा, दृष्टि बदल गए। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है, निरंकार का रूप है, एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है, मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैनू थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकता सी, जिहड़े जिहड़े लफ़्ज़ सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज थोड़ी

मैं सिख मिशनरी हाँ, सिर्फ इस विषय से थोड़े नाल विचार करन लई आया कि गुरु गोबिंद सिंह एक पुल्ला होया रह वर है। खैर राजी हो गए। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा, आप गीता दा पाठ करदे हो और गीता नू मां कहंदे हो। हां मां है मेरी। सवेरे शाम ये गीता दा पाठ करदे सन। ते गंगा सिंह कहन लगे, थानू पता है इस मां करके महाभारत दा युद्ध होया सी। ये मां ना होंदी युद्ध नहीं होना सी। इस मां ने युद्ध कराया है। इतना वड्डा खून खराबा इस मां करके होया है, जिस मां नू तुसी दिन रात नाल लई फिरदे। गीता करके होया है। अर्जन हथियार सुट के मैदान जंग छोड़ के जा रहा सी। उन्हें साफ कह दिता सी, ऐ भगवान मैं नहीं लड़ना, इस सामने मेरा चचेरा विराह है दुर्योधन, इस सामने मेरा पितामा खड़ा है भीष्म, और उस सामने मेरा गुरु खड़ा है मेरे नाल लड़न वास्ते द्रोणाचार्य। अपने गुरु नू मार के, अपने पितामे नू मार के, अपने भरा नू मार के अगर मैनू जित मिली भी तो इस तरह के सिंघासन ते बैठ के मैं की राज करना, सवाय रोना ही होवेगा। मैनू इस तरह का राज नहीं चाहिए। जो अपने भरावां नू मार के मिले, अपने बुजुर्गां नू मार के मिले ते अपने गुरु नू मार के मिले, ये अर्जन की सोचनी बड़ी गजब दी। पर कृष्ण समझांदे ने अर्जन, अपने जिस्म दे उत्ते अगर कोई मवादी फोड़ा निकल आए ते बड़ी पीड़ा होवे, बड़ी दर्द होवे, ते ये थोड़ी आखी दा इसनू चीरा नहीं देना, मवाद नहीं कढ़नी। ठीक है, फोड़ा अपना है, बिल्कुल अपना है, तां वी जरा दे हवाले असी करांगे इसनू चीर दे, मवाद कढ़ दे ताकि शरीर नू शांति मिले। ये सब तेरे अपने ने, पर अर्जन देश धर्म नू ते मनुखता नू चमड़े मवादी फोड़े ने, तो इन्हां नू चीर दे तेनू कोई पाप नहीं लगेगा। कहने ने इस ढंग नाल समझाया। अर्जन ने सुट्टे हुए शस्त्र फिर चुक लए। अला यार खां जोगी ने भी इसका जिक्र किया है, और बड़े सोहने अंदाज दे, कटवा दी ये शिश शाम ने गीता को सुना कर। गीता दा फिलसफा सुना के सुट्टे हुए हथियार चुकवा दिते श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने चुक लाए। अल्लाह यार खां कहिंदा, गीता दा फिलसफा सुना के किसी दे अंदर बीरस भरना ए गल कुछ होर है, पर ए गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल कुछ होर है। क्यों? कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर, रूह फूंक दी गोविंद ने बेटों को घटा कर। गीता दा फिलसफा सुना के किसे अंदर जोश भरना ए गल कुछ होर है, पर अपने ही बच्चिया नू शहीद करा के किसे अंदर मरण दा चाव पैदा करना ए गल कुछ होर है। अला यार खां, किसे नू पानी विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा है, किसे नू मरण दी जाच सिखानी होवे पहले आप मरना पैंदा, नहीं तो मुश्किल हो जाती है गल। ये अला यार खां कहता है। खैर जद गंगा सिंह ने कहा, इस मांग करके युद्ध होया है, जंग हुई है, बड़ा भारी खून खराबा होया है, तो ये मां भी भुली हुई रैबर हुई, पर कृष्ण भी भुले रैबर होया है। अर्जुन ते जा रहा सी, वो ते कहता सी मैं हिमालय चले जाना है, मैं उत्तराखंड जाना है, तप करना है, जप करना है, मैं नहीं लड़ना, ये राजपाठ मैनू नहीं चाहिए, मेरे मन विच बैराग पैदा हो गया है, लड़े बिना बैराग पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सोचता पाया अगर जित भी हो गई पितामा नू मारांगा, गुरु नू मारांगा, पितामे नू मारांगा, ते फिर राजपाठ मिलेगा, इस सारी जिंदगी मेरे मन ते बोझ पिया रहेगा कि मैं अपने भरा नू मार के राज लिया, मैं अपने गुरु नू मारिया, मैं अपने पितामे नू मारिया, मैं नहीं लड़ना। लेकिन कृष्ण ने लड़ाया, आख्या नहीं, पावे तेरा भरा है पर दुष्ट है, देश धर्म नू चमड़े आया मवादी फोड़ है, गलत है, पावे

संसार दे बनाण वाला नहीं, संसार दे बनाण वाला नहीं है। संसार किवें बनिया इहदा ज्ञान देण वाला है। संसार किवें आलमे वजूद दे चाया, इहदी बणतर की है और इह किथे तक पसरे होया है, इहदा बहुत कुछ ज्ञान उसने दिता। चूंकि संसार दे ज्ञान दे उत्ते ही वेद खड़े ने, इस वास्ते ब्रह्मे नूं संसारी कह दिता। श्री कृष्ण ने इत्थे आके अर्जन नूं कहा, त्रई गुणी वेद विशा नस्त्रई गुणी भवार्जन। हे अर्जन, वेद तीन गुणा की गल करदे ने, संसार की गल करदे ने, तू मेरी गल सुन। जो मैं कह रहा इस नूं मन, जो मैं कह रहा उस नाल जुड़ो, क्योंकि वेद संसार की गल करदे ने। दरअसल संसार भी अपने थां दे उत्ते इतना महान है कि इहदी भी खोज होनी चाहीदी है, और खोज करन दिते ब्रह्मा चलिया, उसका शौक सी, उसकी यह बुक सी। जीवन की बहु पक्षी खोज ब्रह्मे ने की थी। संगीत का जन्मदाता ब्रह्मा है, कविता का जन्मदाता ब्रह्मा है, आयुर्वेदिक का जन्मदाता ब्रह्मा है, 84 लाख जून का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा है। मन दियां हालतां नौ ने, रंग नौ ने, सुरां सत ने, जबान दे रस 6 ने, इस तरीके की खोज भी ब्रह्मा करता रहा, और बहुपक्षी खोज उसने जगत दे सामने रखी। चूंकि दिमाग आप दे कोल दार्शनिक दा सी, फिलोसफर दा सी, आप दियां बारीक गल्लां हर मनुख दी समझ दे च ना आईयां, इस वास्ते ब्रह्मे दी प्रतिष्ठा साडे देश दे च कोई बहुत नहीं हो सकी, उहदे कोई बहुते मंदर साडे देश दे च नहीं बन सके। जिस तरह कदम कदम दे उत्ते विष्णु दे मंदर ने, इस तरह दे कदम कदम दे उत्ते ब्रह्मे दे मंदर नहीं ने। कारण की सी? उह दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, इतनी गहरी गल करदा सी, गावे को विद्या विखम विचार, इतनी बिखड़ी विद्या अगों रखदा सी, लोगां दी समझ तो परे दी गल सी, संसार दी समझ तो परे दी गल सी। और परे दी गल इस वास्ते करदा सी कि मनुखां दे अंदर परे जाण दी भुख पैदा कीती जा सके, दूर जाण दी भुख पैदा कीती जा सके। मनुख दा दिमाग जिथे है उत्थे तक दी ही गल कीती जाए तां मनुख दा दिमाग अगे नहीं जा सकदा, अगे बारे नहीं सोचेगा। तो बहुत अगे दी गल ब्रह्मा करदा सी, इस वास्ते उस दे आले दुआले कोई बहुती मनुखता कठी नहीं हो सकी, उसकी पूजा भी साडे देश दे च कोई बहुत वड्डे पद्धर ते नहीं हो सकी, और उसके बहुत सारे मंदिर भी नहीं बन सके। इस दा नुक्ता निगाह जो सी गुरु नानक देव जी महाराज इशारा करदे ने, गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। तीसरा दृष्टिकोण जगत दे सामने रखिया है शंकर ने। इन्हां दा नुक्ता निगाह विष्णु ते ब्रह्मे नालों बिल्कुल न्यारा सी। उन्हां ने जिस ढंग दा ज्ञान जगत दे सामने रखिया, गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन उन्हां दा जिक्र करदे ने, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। शिव जी दे गाण दा ढंग ए सी, गावे को साज करे तन खे, भी परमात्मा तन दी साजना करके फिर खे कर देंदा, जीवन बना के फिर ढा देंदा। मौत ही मौत है समगर जीवन दे च, इत्थे सूरज बनदे ने बुझ जांदे ने, इत्थे धरतियां बनदियां ने मिट जांदे ने, इत्थे मौसमे बहार आंदा है खजां आ जांदी है, इत्थे मनुख जमदे ने मर जांदे ने। मौत ही मौत है, अंत ही अंत है। अंत दा दृश्य जगत दे सामने शंकर ने रखिया। कई दफा मुरदियां दी खोपड़ियां दी माला गल विच पा लैंदा सी, सिर्फ इस वास्ते लोगां नूं पता चले कि मनुख दा अंजाम एही है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਨ ਨੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ।

उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जाता है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दिया हालता विद्वान 9 मन दे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वक वक इस ढंग दिया जो है गिनतियां ने, साहब कहने 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून ता चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहब इस नूं इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करदा है, ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकदा है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, तो उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा है, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उस नूं खाण नूं देवे ओही खांदा सी, इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं का शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघती गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा विच बैठण दी जाच आई, सभा नूं समझण दी जाच आई, सभा विच अपने आप नूं पेश करन दा ढंग इस नूं आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे, उह सभा नूं भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचणी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नूं ढा लिया, तो उसनूं आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नूं दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नूं चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक